0: ऑडियो और गो।
1: नमस्ते बहनों भाइयों, मिर्ची बायस को
2: सुपर सोल्जर तैयार करन का सीक्रेट प्रोग्राम जब पर्सनल एंगल ले लेवे है वहाँ को कहवे हैं एल्फा। YRF Spy Universe की पहली फीमेल लेड एक्शन मूवी है इस हफ्ते की रिलीज अल्फा, जिसका एक्शन है दमदार, एक्टिंग जानदार, म्यूजिक शानदार, लेकिन इन सारी चीजों को बांधने के लिए चाहिए होती है कहानी, जो इस फिल्म में बॉबी देओल के हरियाणवी एक्सेंट के जैसे है बिल्कुल ही बेकार।
3: खत्म।
2: आलिया है सन की सोल्जर, शर्वरी बबली फाइटर, बॉबी और अनिल है इंटेंस, बट ऋतिक का कैमियो डिडंट मेक एनी सेंस। भाई छह उंगली होने का मतलब क्या है, कहीं भी घुसा दोगे?
4: ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
2: सो ऑल इन ऑल फिल्म अल्फा इज डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच। हाँ, इसके OTT पे आने का भी इंतजार कर सकते हो। तो मेरे यानी श्रुति की तरफ से फिल्म अल्फा को 5 में से 3 मिर्चियाँ।
1: Let the whole world sing along। मिर्ची बायस को
5: श्रुति के साथ इट्स हॉट।
6: Back up।

आई जस्ट रियलाइज कि चाय में जैसे मलाई तैरती रहती है ना, एंड यू डोंट रियली वांट इट देयर. आप उसे कितना भी साइड पर कर दो, इट विल स्टिल कम बैक टू द सेंटर कि भाई मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ रहूंगी. वैसे ही कई बार रिलेशनशिप्स में आपकी मम्मी या पापा या भाई या बहन आकर सेटल हो जाते हैं. सडनली ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप दो जनों के बीच में नहीं है, ये रिलेशनशिप तीन जनों के बीच में है, तुम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड और उसकी मम्मी या पापा या भाई. अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, मेरे साथ सिर्फ एक बार हुआ था एंड इट वॉज सो पेनफुल कि उसके बाद मुझे रूट कनाल में भी दर्द नहीं हुई थी. प्लीज शेयर योर स्टोरी विद मी एंड वी विल कंपेयर नोट्स डार्लिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।

ये कौन सी दुनिया में होता है कि ब्लाइंड डेट का मतलब सच में ये है कि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और तब आपको कहा जाएगा कि अब मिलो अपने पोटेंशियल डेट से। आई वॉज सीरियसली स्टंड। ओके, सो इस वीकेंड मैं जनरली ढूंढ रही थी कि क्या करना है सिटी में, कुछ एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग हो रहा है। देन आई केम अक्रॉस दिस थिंग विच सेड, अगर आप सिंगल हैं ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हैं देन यू हैव टू पे 800 रुपये या 1200, आई डोंट रिमेम्बर। और आपको इस वेन्यू पर जाना है जहाँ पर ऑब्वियसली दे विल वेरीफाई यू, पैन कार्ड वैन कार्ड जो भी है, उसके बाद आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। दे विल लीड यू इनसाइड, एक बड़ा सा टेबल होगा, टेबल के इस साइड पर एक और इंसान होगा, इन माई केस इट विल बी अ गाय, जिसकी आंखों पर पट्टी होगी एज वेल, और हम एक दूसरे से बात करेंगे विदाउट सीइंग ईच अदर टू सी कि वाइब चेक होती है कि नहीं। अगर हो जाता है देन आई गेस सेकेंड डेट पर अपना अपना देख लो क्या करना है। But you know, that's the thing. I checked this and across the country, ये एक सिटी की बात नहीं है, most major cities, some even smaller cities are doing this blind date situation, जिसमें genuinely आपकी आंखों के सामने पट्टी बांध देंगे। भाई like I'm thinking कि अगर महाभारत की गांधारी यहाँ होती तो she would feel so inclusive यार। She'd be like I'm not the only one जो पट्टी पहन के घूम रही है, भाई बाकी लोग भी ऐसे कर रहे हैं voluntarily। टॉकिंग अबाउट वॉलेंटरली, आपने अपने रिलेशनशिप में से क्या क्या वाहियात काम किए हैं जो आप वैसे तो ना करते लेकिन प्यार अंधा होता है पुष्पा, जो भी आपने ऐसे वाहियात काम किए हैं, वाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, लेट्स गेट टॉकिंग अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड येस आई विल गो आउट ऑन अ ब्लाइंड डेट विद यू। ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, लाइक मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। नॉट जस्ट अनदर हिट सॉन्ग, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा। नंबर 20।

0: कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, ईवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।
1: मैं

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17

ब्याह करवा दो जी। इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे हैं। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: यार ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई, अल्फा एनिमल सिकंदर धुरंधर, एक शब्द एक पंच, सर्च करने में वैसे आसान भी होता है लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं, एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वो कैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी हैव गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद अ लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते हैं इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

I've never cared about box office numbers. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेजमनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. और एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर जैसी इवेंट फिल्म्स हैं, जिन्हें देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं, एक कल्चरल मोमेंट बन जाता है. नंबर

0: गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज ऑन नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं, मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में। दिस इज मोमो के धागे।
1: Special request song. Yeah.

ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर टू

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ब टू नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर आओ मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया, तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुबंती बागची शरारत करने वाले हैं फिर से। नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे। इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं, लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गाने हैं, उसमें एक नई एंट्री है। हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना होने वाला है, अ स्पेशल स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है, शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है। साडी सुन बाय हर्ष नुसी। हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है, चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number
2: 10. हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे लोग

0: This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार. हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके this week on गाना नंबर 9. इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kaneka. Connect with me Instagram par jao. Mujhe follow kare. Mera handle is @RJKaneka. Follow karna bilkul free hai. @RJKaneka par koi gaane suggest karne hai, koi baatein batani hai. Bindas aake hit me up. Jo agle wala gaana hai, usse is countdown pe pure 23 hafte ho chuke hain. It's a Coke Studio Bharat song. जितना खूबसूरत ये गाना है उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है. आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है. उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट अनूप जैन एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक. बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ. प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है. कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, दैट्स मोर देन अ फ्यूजन, इट्स अ लिटरेरी फ्यूजन जहां उर्दू शायरी मिलती है कंटेम्प्रेरी पॉप सॉन्ग राइटिंग से. एंड अनूप जैन इज द किंग ऑफ पॉप सॉन्ग राइटिंग. एंड आई स्वेयर ये गाना इस बात का इतना बड़ा प्रूफ है दैट आज इंडिया का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने आप में इतना मच्योर, इतना इंडिपेंडेंट हो गया इन रियल सेंस दैट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो भारत ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से. That's why this song sounds so incredible because इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है. पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जंप करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. You are listening to Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanaka. Enjoy.
1: Number 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 6

0: The one and only Diljit Dosanjh, resident dealer of super hit songs, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले एक नई नवेली एंट्री हुई जसलीन रॉयल का गाना इनाम, जिसने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. Swagat hai aapka. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. This show is all about the hottest pop music of the week. And now it's time for us to shine spotlight on our indie pick of the week. And aaj ka gaana spotlight is... गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वाजंट लाइक सच अ रेगुलर डील, एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए. एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्युटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी song, cause एक तरफ है येलो डायरी, one of the best indie pop bands that we have seen. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी, कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है. सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग है शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहाँ एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहाँ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही हैं पर असली बातें होनी बंद हो गई है. येलो डायरी का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दिस इज रोज रोज ऑन गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Dude, this is the song जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे absolute top favorite vocalist बन गए थे. What a voice, goosebumps आ जाते हैं उनकी गाने के थ्रू. जो feelings बयां करना जा रहे हैं ना, वो into 10 times feel होती हैं. राजन बत्रा की आवाज, Yellow Diaries का गाना featuring शिल्पा राव, that was Rose Rose. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी playlist में add कर लीजिए. One of those pop songs जो उतने ही बड़े हुए जितने film के गाने होते हैं. Now countdown पे आगे बढ़ने से पहले, it's time for इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनेका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनेका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका. एंजॉय. नंबर 5.

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

The OG by Kumar Sanu called Tera Mera Pyar. इस गाने के बाद इतने सारे messages, कहानियाँ, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने कॉलेज रोमांस के. And अश्काय और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं आपको इस सेगमेंट के साथ क्लासिक को इतना प्यार देने के लिए. वी रियली टेक योर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली. जो इस हफ्ते हम गाना फीचर करने वाले हैं वो भी आपकी रिक्वेस्ट से ही बजा रहे हैं. The song we're gonna feature this week is...

द ओजी पॉप स्टार सॉन्ग, गाने का नाम है मोहब्बतें लुटाऊंगा बाय अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, लाइक एक पॉप एंथम बन गया था पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था, कॉल करके एसएमएस करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत, एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ, जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं, दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से, जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बतें लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना, दिस इज मोहब्बतें लुटाऊंगा ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वाज मोहब्बतें लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आदर लिरिक्स समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो। अश्काय और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा, फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा। नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर। 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 3।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर लोग गाने सुन के गानों का नाम भूल जाते हैं और मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कनिका वो गाना नंबर 5 कौन सा था, जो गाना नंबर 9 पर बजाया वो कौन सा गाना था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी वॉज ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पर दिस वीक अनूप जैन का अर्ज किया है।
2: कायरे जो थे वो शायर बने।
1: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7। फिर दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबींदा।
1: संजू राठौर विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन द हरियाणवी सेंसेशन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन। ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है। सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: नंबर 2।

Michi. It's hot.

Mirchi. It's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

बस तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तू घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तो मेरा नंबर करे डाल, मैं हूँ तेरे साथ साथ तू है मेरे संग संग, तेरे साथ टाइम की खबर न लगे, किसी भी चीज में कसर न लगे, मांगू दुआ यही नजर न लगे, बेबी ऐसे है मत हमें क्या मत, तू मुझको मिली है, ये है मेरी किस्मत।

ब्रेकिंग न्यूज गाइज, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि मंडे से भी ज्यादा डेंजरस एक चीज है इस दुनिया में, वो है अलार्म बजने के बाद 5 मिनट और सोने की इच्छा। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग। अरे उठ जाओ यार, ये वो जगह है जहाँ पे तुम्हारी चाय और कॉफी को थोड़ा सा कॉम्पिटिशन मिलता है, बिकॉज ये उन दोनों से ज्यादा गर्म है। और अभी अगर फिलहाल तुम ट्रैफिक में फंसने वाले हो, ऑफिस के ई मेल्स खोलने वाले हो, या फिर अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हो, मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ अगले कुछ घंटों तक, और तुम्हारा दिन बन जाएगा मिर्चीदार, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें मिलने वाली है गॉसिप, गुड वाइब्स, मस्ती, म्यूजिक एंड मच मोर। एंड ऑफ कोर्स हम बहुत सारी देसी बातें भी करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रिसला, मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मुझे फॉलो कर लो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो करते हैं फटाफट से टाइम ट्रैवलिंग। सबसे पहले चलते हैं 1456 में, जब जोन ऑफ आर्क का नाम ऑफिशियली क्लियर किया गया। फिर 1892 में फिलीपींस में काटिपुनान नाम से एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनी, जिससे आजादी की मूवमेंट को एक नया डायरेक्शन मिला। और 1898 में हवाई ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बना। मतलब आज जिस हवाईयन पिज्जा पे दुनिया डिबेट करती है, उसकी ज्योग्राफी काफी इंटरेस्टिंग है। 1928 में पहली बार कमर्शियली स्लाइस्ड ब्रेड बेचा गया, और तब से हर अचीवमेंट को कंपेयर किया जाता है द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड से। दैट रिमाइंड्स मी, मेरा ब्रेड खत्म हो चुका है। 1937 में मार्को पोलो ब्रिज के पास हुई एक मिलिट्री क्लैश ने सेकेंड साइनो जापानीज वॉर की शुरुआत की। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू 1981, जब सैंड्रा डे ओकॉनर को यूएस सुप्रीम कोर्ट के लिए नॉमिनेट किया गया, द फर्स्ट वुमन एवर। और 2005 में लंदन के 7/7 अटैक्स ने दुनिया को हिला दिया। आज का दिन उन सब लोगों को याद करने का भी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई उस दिन, और उन हीरोज को सल्यूट करने का भी है जिन्होंने मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाई। एंड दैट्स इट फॉर योर टाइम ट्रैवलिंग। फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में और ये है तुम्हारा मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर अभी फुटबॉल की बात करने वाले हैं।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: सबसे पहले फीफा में एक एरा ऑफिशियली खत्म हो गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन एंड हो गया एज पोर्टुगल लॉस्ट 1-0 टू स्पेन इन अ नेल बाइटिंग राउंड ऑफ 16 मैच। रोनाल्डो साइंस ऑफ विद 27 वर्ल्ड कप मैचेस, 11 गोल्स अक्रॉस 6 वर्ल्ड कप्स एंड हिस्ट्री बना गए एज द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 6 डिफरेंट फीफा वर्ल्ड कप्स। ट्रॉफी हो या ना हो, लेगेसी सॉलिड गोल्ड की है। और स्पेन, दे आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स थैंक्स टू अ ड्रामेटिक लेट विनर बाय मिकेल मेरिनो। टॉक अबाउट लीविंग इट टिल द लास्ट मिनट। दूसरी अपडेट ये है कि यूएसए का वर्ल्ड कप सफर भी खत्म हो गया है आफ्टर अ 4-1 लॉस टू बेल्जियम। और मैच के बाद सोशल मीडिया फुल ऑन मीम मोड में आ गया था, विद सम फैंस जोकिंगली कॉलिंग इट डबल कोट्स में ट्रंप इफेक्ट या ट्रंप कर्स। ये रिएक्शन ऑनलाइन फैंस के थे आफ्टर रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड अ प्लेयर सस्पेंशन, नॉट एन ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन फॉर द रिजल्ट। और अब तक राउंड ऑफ 16 से कनाडा, पैराग्वे, ब्राजील, मेक्सिको, पोर्टुगल और यूएसए टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। क्वार्टर फाइनल्स की रेस अब और भी ज्यादा मिर्चीदार होने वाली है। वैसे तुम टीम मेसी, टीम रोनाल्डो या बस टीम मुझे पेनल्टीज ही समझ में नहीं आती है वाले हो, बताओ मुझे। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम। डीएम कर सकते हो तुम इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे, या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर लिखो 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अपने मैसेजेस भेजो। मीनवाइल आई विल गो एंड प्ले सम मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और ये है मिर्ची का वेदर चेक, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तो फिलहाल आज के दिन स्काई जो है वो क्लाउडी है, करंट टेम्परेचर है 66 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन हवा थोड़ी सी एक्स्ट्रा ड्रामेटिक है, मेकिंग इट फील लाइक 64 डिग्रीज फारेनहाइट। पिछले 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 27 मिलीमीटर्स की बारिश हो चुकी है। नेचर ने लिटरली फ्री कार वॉश दे दिया है, और गुड न्यूज ये है कि अगले 24 घंटों में सिर्फ 1 मिलीमीटर की रेन एक्सपेक्टेड है। अभी जो हल्की हल्की बरसात चल रही है उसमें अम्ब्रेला को गोस्ट बिल्कुल नहीं करना है, उसकी भी फीलिंग्स होती है, उसे अपने साथ लेकर जाना है जहां भी जा रहे हो, बिकॉज यू वुड नीड इट। आज का टेम्परेचर रेंज इज 65 से लेकर 77 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में, और फील होगा 64 से लेकर 75 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में। वेदर का मूड आज एक्चुअल टेम्परेचर से काफी अलग अलग है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। वैसे आज का हाई इज ऑलमोस्ट कल के जैसा ही, तो वेदर जो है वो प्लॉट ट्विस्ट नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। तुम्हें भी कंसिस्टेंसी दिखाना है विद योर वर्कआउट, एंड ऑफकोर्स कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50++++ के साथ वाला। एंड डू आई नीड टू से, मिर्ची की वाइब्स अपने साथ बना के रखो, मिर्ची लगाए रखो और मुझे सुनते रहो। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची आवर का 3 ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने इंडोनेशिया विजिट के दौरान वंस अगेन रीटरेटेड दैट इंडिया सपोर्ट्स अ टू स्टेट सॉल्यूशन फॉर इजराइल एंड पैलेस्टाइन विद डायलॉग एंड लॉन्ग टर्म पीस टेकिंग प्रायोरिटी। इस विजिट में डिफेंस कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर पार्टनरशिप, वीट सीड एक्सपोर्ट्स और इंडोनेशिया में IIM बैंगलोर का ओवरसीज कैंपस जैसे कई अग्रीमेंट्स भी अनाउंस हुए हैं। नंबर 2 पर पुणे बिजनेसमैन केतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन में एक नया ट्विस्ट आया है। पुलिस के मुताबिक डिजिटल एविडेंस और व्हाट्सएप चैट से ये क्लेम सामने आया है कि केस के दो मेन अक्यूज्ड चेतन एंड सिया अलेजेडली क्राइम से कुछ महीने पहले सीक्रेटली मैरिड थे। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और अथॉरिटीज एविडेंस एग्जामिन कर रही है। एंड फाइनली नंबर 3 पर अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट ने 38 डेथ सेंटेंसेज और 11 लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्विक्शंस को अपहोल्ड किया है। ये ब्लास्ट इंडिया के सबसे डेविस्टेटिंग टेरर अटैक्स में से एक थे। इस खबर के साथ हम उन सब लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन फैमिलीज के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जो आज भी उस दर्द को जी रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है तुम्हारा फिल्मी पिट स्टॉप ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुंबई की बारिश भी शायद ब्लेसिंग मोड में थी क्योंकि आमिर खान एंड गौरी स्प्रैट अपनी शादी के बाद पहली बार पब्लिक में साथ में नजर आए। न्यूलीवेड्स वर स्पॉटेड इन बांद्रा, रेन हो रही थी, कैमरास फ्लैश कर रहे थे और दोनों काफी हैप्पी लग रहे थे। कपल ने 5th of July को ही आमिर के बांद्रा रेजिडेंस में एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी की जहां पर सिर्फ क्लोज फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल थे। नो ओवर द टॉप ड्रामा, नो 100 डांस परफॉर्मेंसेस, बस प्यार, प्राइवेसी और हैप्पी वाइब्स। एंड ऑनेस्टली यार, बारिश में न्यूली मैरिड कपल की पहली अपीयरेंस, बॉलीवुड को इससे बेटर मूवी ओपनिंग सीन कभी मिल सकता है क्या? और बॉलीवुड के न्यूली वेड कपल की बात अगर हम कर रहे हैं तो ज्वेलरी की बात कैसे ना करें। ज्वेलरी से मुझे याद आया, आरके ज्वेल्स लेकर आए तुम्हारे लिए, गेट रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइस, जीरो लेबर चार्जेस, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस, ओनली इन गोल्ड एंड डायमंड्स की वैल्यू। फटाफट से पहुंचो आरके ज्वेल्स पर फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑब्वियसली अप्लाइड। डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज द नंबर, 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगेस का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मॉर्निंग, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। अगर तुम्हारा आज यानी कि 7 जुलाई को हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले मिर्ची मॉर्निंग्स की तरफ से एक जायंट वाली झप्पी और पपी। हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जिसका हैप्पी बर्थडे है, आज बहुत अमेजिंग लेजेंडरी लिस्ट है मेरे पास। सबसे पहले क्रिकेट की दुनिया के कैप्टन कूल, तुम्हें पता ही होगा MS धोनी का आज हैप्पी वाला बर्थडे। वो आज ही के दिन इस धरती पर आए थे। हेलीकॉप्टर शॉट हो या प्रेशर सिचुएशन हो, वो हमें बताने आए थे कि कैसे कूल रहना है। बंदा इतना काम रहता है कि लगता है स्ट्रेस भी उनसे परमिशन लेकर आता है उनकी लाइफ में। वैसे म्यूजिक लवर्स के फेवरेट कैलाश खेर भी आज ही के दिन इस धरती पर आए थे। अगर तुम भी उनकी दीवानी हो या दीवाने हो तो आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। उनके कुछ गाने सुन सकते हैं हम। कन्नड़ा सिनेमा को ग्लोबल मैप पर और भी ज्यादा चमकाने वाले ऋषभ शेट्टी, द क्रिएटिव फोर्स बिहाइंड कांतारा टाइप की मूवी, उनका भी आज ही जन्मदिन होता है। और फिर हॉलीवुड के फैंस पीछे चले जाएंगे। एक्टर एलन पेन, जिनको तुमने न्यूयॉर्क सिटी में देखा होगा, वैम्पायर इन ब्रुकलिन में देखा होगा एंड द परफेक्ट स्टॉर्म में देखा होगा। अब बर्थडे रेजोल्यूशन सिंपल है, एक्स्ट्रा केक खाओ, सेल्फीज लो, कैलोरीज को कल के लिए पुश फॉरवर्ड कर दो और आज के लिए खुश रहो जैसे मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश रहते हैं। मिर्ची चलाओ, मिर्चीदार बैंगर्स मैं तुम्हारे लिए चलाने वाली हूँ। मुझसे कनेक्ट करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4। Stay tuned and stay hot.

0: देखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन बढ़ते हुए दाम फिलहाल गोल्ड के हैं। और क्या है आज का लेटेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर का रेट? लेट्स फाइंड आउट मिर्ची मॉर्निंग्स पर मेरे यानी के प्रसला के साथ में।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,150, $4,150 पर अउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। जब भी हमने ज्वेलरी खरीदनी होती है तो गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज उसी के हिसाब से लेबर चार्जेस भी उसमें कैलकुलेट होते हैं। और अगर आपके पास पुराना गोल्ड पड़ा है जो आप यूज नहीं करते, राज ज्वेल्स की स्पेशल एक्सचेंज ऑफर जिसमें आप अपनी 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी भी ज्वेलर से खरीदी हो, राज ज्वेल्स के साथ आके फुल एक्सचेंज वैल्यू आप गोल्ड एक्सचेंज कर सकते हैं और नए डिजाइन के गहने ले जा सकते हैं। कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर के लेटेस्ट रेट्स फ्रॉम द ज्वेलर्स माउथ इटसेल्फ। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224।

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा मेरा।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ और ये है मिर्ची आवो के 3 एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक फ्रेश स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इधर मेक अ डील और फिनिश द जॉब। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट के बजाय अग्रीमेंट को प्रेफर करते हैं। एज एक्सपेक्टेड, इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेशनल सर्कल्स में काफी डिस्कशन शुरू हो चुके हैं। नंबर 2 पर इंडिपेंडेंस डे के बाद वॉशिंगटन ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन शायद ये वाला किसी की विशलिस्ट में नहीं था। मैसिव 4th ऑफ जुलाई फायरवर्क्स के बाद कुछ घंटों के लिए वॉशिंगटन दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड मेजर सिटी बन गया था। एंड फाइनली क्रिकेट से टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। श्रेयस अय्यर कैप्टन होंगे, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन, यंग टैलेंट वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह एंड मयंक यादव स्क्वाड में है। इस बार संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिली है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर विद मी प्रिसिला। मैसेज करो या टैग करो मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: राइट, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. ऑफ कोर्स दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और एक्सक्लूसिवली यहाँ पर तुमको मिलता है मिर्ची राशि जोन, जहाँ पर हम बातें करते हैं सितारों की.
1: मिर्ची राशि जोन
0: एरीज यानी कि मेष राशि, आज थोड़ा सा चिल मोड में रहो यार. हर बैटल लड़नी जरूरी नहीं होती, टीम वर्क से काम जल्दी बनेगा. लकी कलर फॉर यू इज वाइब्रेंट येलो एंड लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज किसी से मीठी मीठी बातें इंस्टेंटली ट्रस्ट बना देंगी तुम्हारा. फैक्ट्स को चेक करना लेकिन, क्योंकि हर ब्रो ट्रस्ट में ट्रस्टवर्दी नहीं होता है. लकी कलर इज सेज, लकी नंबर इज 42. जेमिनी यानी मिथुन राशि, शाइनी अपॉर्चुनिटी सब गोल्ड नहीं होती है. वॉलेट और विजडम आज दोनों चीजों का ध्यान रखो, दोनों को साथ में लेकर चलो. लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन, लकी नंबर इज 9. कैंसर यानी कर्क राशि, बिग प्लान्स अमेजिंग, बट थोड़ा सा पेशेंस भी रखो. मिड वीक के बाद एक्शन लेना ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है. कभी कभी स्लो कुकर पर खाना बनाना बेस्ट होता है. लकी कलर फॉर यू इज गोल्डन मस्टर्ड, लकी नंबर इज 26. लियो यानी की सिंह राशि, कॉन्फिडेंस इज योर सुपर पावर और ओवर कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग यू लॉसेस. आज बोलने से पहले एक बार रिवाइंड बटन दबा लेना. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 14. वर्गो यानी कि कन्या राशि, जो प्रॉब्लम तुम अवॉइड कर रहे हो वो शायद उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो, तो फेस इट विद अ लॉट ऑफ ब्रेवरी. फ्यूचर वाला यू विल बी वेरी हैप्पी विद द प्रेजेंट वाला यू. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 14. एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 1. बाकी बची 6 राशियां आएंगी पार्ट 2 में, जो आएगा थोड़ी सी देर के बाद. बट थोड़े से मिर्चीदार बैंगर्स अभी फिलहाल तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ. मैं बोलूँ तो प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: लाइफ का जीपीएस तुम्हें किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, लेट्स रीकैलकुलेट। मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर
1: मिर्ची राशि जोन।
0: तुला राशि, ऑफिस या सोशल सर्कल में टॉक्सिक एनर्जी से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना आज के लिए बहुत बड़ा स्मार्ट मूव होने वाला है। पीस इज नाउ अ लग्जरी। लकी कलर फॉर यू इज आक्वा, लकी नंबर इज 23। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज क्विक थिंकिंग तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होने वाली है। अपॉर्चुनिटी नॉक करे तो स्नूज मत दबा देना। लकी कलर फॉर यू इज मरून, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सब एडवाइस फ्री होती है लेकिन सही नहीं होती है। आज अपनी खुद की इंट्यूशन पर फुल भरोसा रखो, दिल और दिमाग दोनों को आपस में कनेक्ट करो, कंसल्ट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो, लकी नंबर इज 12। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज जितना प्रॉमिस कर सकते हो उतना ही बोलो। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, बॉस भी खुश और तुम भी खुश। लकी कलर इज स्लेट ग्रे, लकी नंबर इज 12। एंड अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, अगर कोई अचानक एक्स्ट्रा स्वीट बन रहा है तो बस आंखें खुली रखना, काइंड रहो बट बाउंड्रीज भी जरूरी है। लकी कलर फॉर यू इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 45। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज यानी कि मीन राशि, छोटी सी सेटबैक को ब्लॉकबस्टर ट्रेजेडी बना देना ये तुम्हारा टैलेंट है, लेकिन ऐसा नहीं करने का है बेबी, सब ठीक हो जाएगा और शायद एक्सपेक्टेड से जल्दी हो जाएगा। सो जस्ट ब्रीद एंड बिलीव दैट यू हैव गॉट दिस। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 6। एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 2। मेरे यानी कि प्रिसला के साथ तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, मुझे जाकर देख भी लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून and stay hot।

यार ये टाइम इतनी जल्दी क्यों फ्लाई कर जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और लगता है अभी तो हमने चाय बनाई ही थी, अभी तो हम आकर बैठे ही थे और देखो अब जाने का टाइम हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर। आज का शो खत्म होने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम हॉलीवुड। ब्रैड पिट और ज्वेलरी डिजाइनर इनेस डे रमोन, जो 2022 से एक साथ देखे जा रहे हैं, हैव नाउ मेड देयर रिलेशनशिप इंस्टाग्राम ऑफिशियल। दुनिया में अब रिलेशनशिप के दो ही लेवल बचे हैं, इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड दूसरा है पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम। इस अपडेट के बीच में एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन है कि ब्रैड पिट की फॉर्मर वाइफ एंजेलिना जोली ने रिसेंटली शेयर किया था कि 2016 के सेपरेशन के बाद उन्होंने किसी को डेट नहीं किया, और इनेस भी अपनी प्रीवियस मैरिज के बाद एक नई बिगिनिंग के साथ लाइफ एंजॉय कर रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर लव स्टोरी का अपना एक टाइमलाइन होता है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन होती है, कोई लोकल ट्रेन होती है, और कोई पॉटहोल्स पर उछलती हुई ऑटो रिक्शा होती है। यानी कि कभी कभी कोई पहले इंस्टाग्राम पे आ जाती है और फिर फैमिली को पता चलता है, और कभी कभी फैमिली को बहुत टाइम से पता होता है और फिर इंस्टाग्राम ऑफिशियल कर ही दिया जाता है, और कहीं कहीं पर सिर्फ मजाक चल रहा होता है, यानी कि सिचुएशनशिप। एंड ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग ड्राइव, योर किचन प्लेलिस्ट, या फिर योर ऑफिस कम्यूट। तुम्हारे बिना मिर्ची मॉर्निंग जरूरी है यार। मैं बोलूं तो प्रिसला साइंस ऑफ यहां पर। यू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग विद मी, फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। WhatsApp पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: बचपन में हमने सुना था कि किसी बंदे को अगर जज करना हो ना तो उसके शूज से करें। आप अभी भी ये फॉलो करते हैं या आपने भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से जज करना शुरू कर दिया है?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और शूज से किसी बंदे की पर्सनालिटी चेक करने का मतलब मुझे तब तो समझ में नहीं आया था जब इसके बारे में सुना था बचपन में कि आखिर शूज में देखना क्या है। और मेरे भी स्कूल शूज के सोल्स मोची की स्टिच से सिले हुए होते थे, तो ये पॉइंट तो मैं काउंट ही नहीं करती कि अगर जूतों में जोड़ है तो इंसान की शख्सियत ही सही नहीं। लेकिन आज जब मैं एक पब्लिक प्लेस में थी तब अचानक मैंने एक बंदे के शूज नोटिस किए जो बहुत गंदे लग रहे थे। हालांकि उसके कपड़े एकदम टिप टॉप थे और मेरे दिमाग में एक डायलॉग पॉपअप हुआ अपने आप कि कितना लेजी है ये बंदा। और सच कहूं तो मुझे ये बात एक्चुअली आज समझ आई कि जब आपको जूते देखकर पर्सनालिटी जज करने को कहा जाए ना, तो इट्स अ हम्बल वे टू जज द पर्सन, ना कि जजिंग द पर्सन फॉर हिज वेल्थ। लाइक आई रियली लाइक वेयरिंग कोल्हापुरीज एंड ऑल काइंड्स ऑफ फ्लैट सैंडल्स, जिसका मतलब ये हुआ कि आई लाइक माई कम्फर्ट मोर देन लुक्स, और हील्स मुझे इसलिए इतनी अपीलिंग नहीं लगती है। वैसे आपके सामने इस वक्त जो भी इंसान है उसके फुटवेयर देखकर आपको उस इंसान के बारे में क्या समझ आ रहा है? आई एम क्यूरियस टू नो। DM करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड लेट्स किक स्टार्ट मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए। वैसे 90s में तो हमने आज हो रही काफी सारी चीजों को नहीं सोचा, लेकिन आज जीने के बाद अब काफी कुछ सोचा है। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आज वीसीआर पर मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें हीरोइन का नाम दया शंकर था और हीरो का नाम उमा पार्वती।
1: मिर्ची वीसीआर।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा और राम गोपाल वर्मा की दौड़। देखो, दौड़ अपने टाइम में दौड़ी तो डेफिनेटली नहीं, बट बेचारी चली भी नहीं। उर्मिला मातोंडकर और संजय दत्त स्टारर ये मूवी लोगों को भले ही उस टाइम पर नहीं समझ में आई हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। लाइक चाकू की एंट्री वाला सीन आपको याद है? वो सीन मुझे बहुत ही हिलेरियस लगा था। एंड बाय द वे, आपने मूवी के म्यूजिक में दौड़ को दौड़ सुना होगा? Well, that was actually a mispronunciation by Rehman साहब, जिसे लोगों को ये लगा था कि ये मूवी जो है, it's about the Don दाऊद इब्राहिम। ये मूवी तो दाऊद पर नहीं थी, लेकिन इस मूवी से राम गोपाल वर्मा को अपनी सत्या के लिए एक डॉन जरूर मिल गया था। कौन था वो बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रामगोपाल वर्मा मनोज बाजपेयी को दौड़ में कास्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं कि उनका काम अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसीलिए कि उनका काम इतना अच्छा लगा कि दौड़ का छोटू मोटू सा रोल देने के लिए उन्हें लगा कि यार ये ऐप नहीं है, इन्हें तो भिगु मात्रे का रोल देना चाहिए। Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मनोज बाजपेयी जब दौड़ के विलेन के छोटे से रोल के लिए राम गोपाल वर्मा से मिले थे तो आरजीवी वाज शॉक्ड टू नो कि मनोज इज द सेम गाय फ्रॉम बैंडेड क्वीन, और उन्होंने मनोज को कहा कि वो यार इतना छोटा रोल डिजर्व नहीं करते हैं, एंड देर आर बेटर थिंग्स लाइंड अप फॉर हिम लाइक भीगु मात्रे इन सत्या। लेकिन फिर भी मनोज वांटेड टू डू दिस छोटू सा रोल बिकॉज उनके स्ट्रगल के दिन चल रहे थे एंड ही नीडेड द मनी, और यूं मनोज बाजपेयी दौड़ और सत्या का हिस्सा बने। हालात उस टाइम पर ऐसे थे कि बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान भी हानिकारक था उनके लिए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: बिल्कुल बेसिक से सेटअप वाले ये डांस रियलिटी शो ने अपने टाइम में कितनी आग लगाई थी यार।
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड द शो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ डांस रियलिटी शो, जो जब आया था तब उस दौर में जजेस का रोना, टीआरपी के लिए पर्सनल लाइफ को धोना कुछ नहीं हुआ करता था। होता था तो सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्टेस्ट एंड द बेस्ट परफॉर्मर यूज्ड टू विन। इस शो को याद कर रही हूँ तो यूँ लग रहा है कि यार लाइफ यूज्ड टू बी सो सिंपल इन दोज डेज। नावेद, जावेद और रवि, जो कि इस शो के कर्ता धर्ता और जजेस थे, दे यूज्ड टू क्रैक द ऑडियंसेस विद देयर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आई फील दे वर द मोस्ट ऑनेस्ट एंड नॉन स्क्रिप्टेड जजेस टिल नाउ। व्हाट डू यू से? बूगी बूगी अगर आज वापस आए तो कौन जजेस हो और किस तरह से वापस आए? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए अगला गाना आ रहा है, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची।

0: कैलाश खेर की आवाज में ना मंडे मोटिवेशन के लिए ये एकदम एप्ट गाना है बॉस, कि अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे। वाकई में यार मंडे के दिन ना कोई एक वजह मिल जानी चाहिए हमें बस, कि हम मुस्कुरा दे किसी तरीके से, नहीं क्या? और बात भी कितनी सही कही है कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। मतलब ये जो हम टूट जाते हैं ना संडे के बाद मंडे को, कि यार अब कैसे गुजर होगा, संडे खत्म हो गया, वीकेंड चला गया, वीकडे शुरू हो गया, कैसे जिएंगे हम। लेकिन वही वाली बात है ना कि एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब ऊपर वाले को याद करते हुए मेरे यारा, टाइम इज फॉर मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गानों की पहचान आपको करनी होती है जिन्हें की मिक्स करके मैं आपके सामने पेश करती हूँ। और आज का जो मिक्स है वो है कुछ यू।

बस जी, अब सिंपल सा काम है, कार्यक्रम ऐसा रहेगा कि आप मुझे डीएम करेंगे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, इन दोनों गानों के नाम और अपना नाम लिखकर मुझे फटाक से भेज दो, एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आई डोंट नो अबाउट यू कि आप कितने आमिर फैन रहे हो, लेकिन मैं इतनी आमिर फैन रही हूँ कि मैंने मेला फिल्म भी देख डाली है। और मेला फिल्म का एक सीन ऐसा है जो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है फ्रॉम अ हॉलीवुड फिल्म।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड धर्मेश दर्शन की डायरेक्टेड मेला मूवी में देयर इज दिस वन सीन जहां पर आमिर खान और उनके जो भाई हैं फैसल खान, उन दोनों का एक सीन चल रहा है जिसमें कि वो ट्रक में ट्रैवल कर रहे हैं एंड आमिर खान को बहुत ही इमरजेंसी में पी करना था। फैसल खान डज नॉट स्टॉप द ट्रक और आमिर खान एक बॉटल में यस। तो क्या है कि इस सीन के अंदर देयर कम्स अ पुलिस वाला विच इज प्लेड बाय जॉनी लीवर एंड वो सीन जो है वो काफी हिलेरियस हो जाता है बिकॉज जिस बॉटल के अंदर आमिर खान ने वो लिक्विड रखा था, वेल दैट बॉटल द पुलिस वाला थिंक्स इज अल्कोहल और वो उसको जब्त करने के लिए सोच रहा होता है और उसको चख लेता है। सो दिस सीन जो क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट नहीं हुआ है, एक्चुअली रिक्रिएट हुआ है। एंड दिस सीन इज एग्जैक्टली कॉपीड फ्रॉम अ फिल्म जो 1994 में बनी थी इन हॉलीवुड, डम एंड डमर। एंड डम एंड डमर में इस सीन में देयर वाज जिम कैरी एंड जेफ डैनियल्स हु प्लेड द रोल ऑफ फैसल खान एंड आमिर खान। तो डम एंड डमर वे टू बेटर है मेला से, बट हाँ, मेला जो पूरी थी थकेला, इस सीन की वजह से थोड़ी बेहतर हो गई थी। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपको पता है कि जब कोई बाथरूम जाया करता था तो हमें ऐसा क्या होता था कि बाथरूम की लाइट बंद करना कंपलसरी सा लगता था हमारी बॉडी को।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, हम 90s kids के दिमाग बड़े वेले हुआ करते थे यार। और शायद यही वजह थी कि हम अपने भाई बहनों को परेशान करने के लिए नए नए तरीके निकाला करते थे, और उनमें से एक तरीका था बाथरूम की लाइट बंद करके भाग जाना। पर मुसीबत तो तब होती थी ना जब कोई हमारे साथ बदला निकालते हुए सेम चीज करता था। तब सोने पर अभागा ये होता था कि यार लाइट तो वो लोग बंद करके जाते ही जाते थे, और साथ में रिसेंटली वॉच्ड हॉरर मूवी के किसी कैरेक्टर का नाम भी याद दिला दिया करते थे कि देख देख पीछे से सामरी का हाथ आ रहा है। और ये जानते हुए कि एक प्रैंक है, मैं वो सब इमेजिन कर लिया करती थी जो उन लोगों ने कहा है। मैंने कहा ना हम 90s किड्स बड़े वेले हुआ करते थे। वेलेपन में आपकी क्रिएटिविटी कैसे काम में लिया करते थे? डू डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। एंड नाउ कम्स दैट गाना जो मेरे 90s के दिल को एक्सप्लेन करेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: डियर आम पापड़,
1: यादों को चिट्ठी।
0: तुम आम नहीं, बड़े खास हो, बचपन का खट्टा मीठा एहसास हो। पर जाने मार्केट में क्या हलचल हुई कि अब तुम फिजिकली दूर हो, लेकिन स्टिल दिल के पास हो। वो पीली पन्नी में बंद के तुम आते थे और अपने अंदर खट्टे मीठे स्वाद जो तुम लाते थे, आज इंटरनेशनल चॉकलेट्स तक घर पर आ जाती हैं, पर उनमें भी तुम जैसी बात नहीं आती है। परत परत बारीकी से निकाल कर तुम्हें हम खाते थे, एक पैकेट जितना लंबा चल सके यही हम दिल से चाहते थे। बिंजिंग के नाम पर आज जाने क्या क्या खा लिया जाता है, फिर भी रूह कहती है मजा नहीं आता है। तुम आ जाओ नजर किसी किराने की दुकान पर तो मजे भी कहेंगे कि देखो हमारा प्यारा आम पापड़ आया है। कई दुकानों पर तुम्हारे लिए पूछा लेकिन तुम कहीं मिले ही नहीं। और फिर एक दिन मेरी कजिन ने तुम्हें और तुम्हारे जायके को जुबान पर जब बिठाया ना, तो तुम्हारी यादें और ताजा हो गई। मिस यू माय बचपन के डिजर्ट एंड स्नैक, प्यारे आम पापड़, तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, जो आपको यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: देखो प्यार हुआ इकरार हुआ लेकिन प्यार के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं और मैं इन दोनों गानों के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कैसेट के साइड ए का ये चौथा गाना इज दिल क्या करे।
1: मिर्ची 90s कैसेट
2: अदनान समी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म सलामी इश्क इज सच अ मेलोडियस ट्रीट टू आवर इयर्स। हाँ एंड वाकई में ये सारे के सारे जो सिम्टम्स इस गाने में बताए गए हैं ये सब प्यार के साइड इफेक्ट्स हैं कि बाहर कुछ और हो रहा है और अंदर हमारे कुछ और ही हो रहा है टोटली ऑपोजिट जैसे कि ये
3: सीरी सीरी जब ती रातों में जलता हूँ मैं बरसातों में
2: जरा सोचो बरसात में भी कोई जलता होगा। ऑफ कोर्स जिसने मोहब्बत करी है वो बरसात में ही जलता है और जब प्यार होता है ना तो इंसान कहाँ होता है उसे खुद भी पता नहीं होता है यार क्योंकि इंसान जहाँ होता है वहाँ पर तो उसका ध्यान लग नहीं रहा होता है। दिन भर कुछ मिस करता है जाने कैसी ख्वाहिश करता है भीड़ में तन्हा रहता है दिल क्या करे। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू लेकिन इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है रही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा अगर मुझे कहीं ढूंढना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ना बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।

Itchy. It's hot.

0: ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन आपको पता है दिलीप कुमार साहब ये ट्रेजेडी रोल्स करते करते थक गए थे, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ने लग गया था। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: हर कहानी में समझिए ना कि रंज और तकलीफ, और रोज सुबह उठिए तो नहा धो के कपड़े बदल के आप स्टूडियो में पहुंची तो कोई रोने मरने का सीन या कुछ तकलीफ का, इस किस्म की चीज जो है वो इंसान के जहनी नशोनुमा पर वो असरअंदाज होती है। और छोटी उम्र में ये चीज बहुत ही असरअंदाज होती है तबीयत के ऊपर। और इसके लिए मैं कई मैंने ड्रामा के कोच थे जिनसे बात की और जिनसे मशवरा किया, कुछ साइकाइट्रिस्ट थे उनसे मशवरा किया, और उन्होंने यही कहा कि इस चीज़ से इसके छुटकारा पाने के लिए आप ज़रूर कॉमेडी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कॉमेडी करने की, एक्शन का फिल्म करने की, या किरदार को अपने जो है एक यानी शदीद किस्म की तब्दीली अपने किरदार में लाइए, काम करने का जहाँ तक ताल्लुक है उससे वो फायदा होगा।
0: बस इसके बाद इन्होंने कॉमेडी, पटाखा, फायर क्रैकर टाइप के रोल्स करने शुरू कर दिए। और इसी तरह का एक पटाखा गाना इनका सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमारा

0: सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ, चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा ओजी हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची

0: हमारे यूसुफ खान साहब, पठान साहब, ये दिलीप कुमार कैसे बने? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये नाम बदलने की वजह सुनी उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या शेयर की थी।
1: हकीकत बताऊँ, पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा। मेरे वालिद फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे और उनके अजीज दोस्त एक लाला बशीरनाथ थे, जिनके साहेबजादे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्म एक्टिंग किया करते थे, और वो अक्सर बशीरनाथ जी से बड़ी शिकायत करते थे कि तुमने ये क्या कर रखा है कि तुम्हारा इतना नौजवान और सेहतमंद लड़का देखो ये क्या काम करता है। तो मैं जब फिल्म में आया तो मुझे वो खौफ भी था कि ये जब इनको मालूम होगा तो नाराज़ बहुत हो गए। उस वक्त दो तीन नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए। तो मैंने अपनी ज़ाती तौर से कहा कि यूसुफ खान मत रखिए और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए।
0: और इस तरह ये दिलीप कुमार बन गए, कभी देवदास के देवा, कभी मुगले आजम के सलीम बन गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ, चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा ओजी हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जींस ओनली ऑन मिर्ची।

0: दिलीप कुमार साहब ने अपने 50 साल के करियर में कुछ 50-60 फिल्में की होंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, बिकॉज ही बिलीव्ड इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सुनिए इस बारे में, एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: मिर्जा गालिब लिखते हैं कि अगर हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए, हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। If you have the same artist for breakfast, in the same artist for lunch, in the same artist for dinner, I mean, if that is the frequency, कि हर साल उनके 6-7-8 फिल्म हैं, हर फिल्म में वो ऐसा प्रिडिक्टेबल काम करते हैं कि आप ये महसूस करते हैं कि इस फिल्म में तो वो उस फिल्म की झलक है और इस झलक में उस फिल्म, सो दैट एक कॉमन पर्सनैलिटी बन जाती है। क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी टकसाली काम होता है, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट तवज्जो से चुनेंगे, लोगों के आगे अलग अलग चीज़ें फिल्म या किरदार पेश करते हैं, वो एक रीजन होता है लॉन्जिविटी का।
0: कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, और आप फिलहाल एक काम करो, मुस्कान को ले जाओ कान तक और कान रखो मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: हसी।
1: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: द मोस्ट फिनोमिनल एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा दिलीप कुमार साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और उनके मोस्ट फिनोमिनल रोल्स में से एक है देवदास फिल्म का रोल। इसके बारे में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया इस फिल्म के बारे में, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: देवदास फिल्म थी, शरद चंद्र चटर्जी की कहानी थी। फिल्म जो होता है वो लिटरेचर पर मुबनी होता है, डिपेंड करता है। जितनी के क्लासी की कहानी थी तकरीबन लगभग उससे मिलता जुलता उसी वजन का वो फिल्म भी बना। और मुझे लगता है आपको देवदास पसंद है ज़ाती तौर पर, और मुझसे पूछेंगे तो ज़ाती तौर पर देवदास मुझे भी पसंद है। कुछ लोगों को अब भी पूछिए तो कहते हैं कि देवदास बहुत बेहतर है। हमारे दोस्तों का एक हल्का है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं सबसे अच्छा तुम्हारा फिल्म जो था वो कोहिनूर था, और वो फिल्म कोई ट्रेजिक फिल्म देखना ही नहीं चाहते। कई लोग हैं कहते हैं कि क्या हम दिन भर के काम काज के बाद जाएं तुम्हारे रोने धोने का फिल्म देख के, हम तो पहले पूछ लेते हैं भाई कि इसमें क्या काम कर रहे हो तुम।
0: वैसे 1960 की कोहिनूर फिल्म वही फिल्म है विच वॉज सॉर्ट ऑफ अ डिपार्चर फ्रॉम हिज ट्रेजिक रोल्स। इसमें उनका रोल बहुत लाइट हार्टेड कॉमिक था। एक क्लासिकल सॉन्ग इन पर पिक्चराइज हुआ था जिसके लिए इन्होंने स्पेशली सितार प्ले करना सीखा था। सुन लेते हैं वो गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: आपको पता है दिलीप कुमार साहब बहुत अच्छी शायरी करते थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे और बहुत अच्छा गाते भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर उनको ऐसा नहीं लगता था। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनको गाने को कहा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: गाने वाने का काम मेरा नहीं है। मैं अंग्रेजी में कहते हैं ना, जो टॉयलेट रूम सिंगिंग, वो हमारी वही है, आप उसको वहीं रखिए।
0: इसके बाद काफी रिक्वेस्ट इसरार करने के बाद आखिर उन्होंने कुछ गा के सुनाया, सुनिए।
1: सुकून दिल के लिए

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची
1: रेडियो मिर्ची
2: रेडियो मिर्ची के साथ
3: मिर्ची इट्स हॉट।
0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मेरी ट्रेजेडी ये ही है कि अक्सर ऐसा हुआ कि जो गाने मुझको पसंद आते हैं, पिक्चर से पहले मैंने नौशाद साहब से भी कहा कि मुझको ये कैसा गाना आपने दिया है, सामान ले चले नौत का सामान ले। और नरगिस को आप अच्छे गाने देते हैं या निमी को या नाजरा को अच्छे गाने देते हैं, तो कहीं नहीं भाई लिखिएगा ये अच्छा। और मेरे जो पसंद के होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो मुझको अपने गाने अच्छे नहीं लगते वो सब हिट हो जाते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी अलामत है, इट्स ए वेरी हेल्दी इंडिकेशन इफ़ आई स्टार्ट ऑफ बाई नॉट लाइकिंग ए सॉन्ग इट बिकम्स अ बिग हिट।
0: इसी बात पे इनका ये माइंड ब्लोइंग सुपरहिट गाना सुन लेते हैं, जिसके बगैर हर शादी हर बारात अधूरी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा ओजी हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची।

0: कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा ओजी हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा दिलीप कुमार साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अपने करियर में जो रूल जो फिलॉसफी वो फॉलो करते थे वो था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और पता नहीं कितने रोल्स उन्होंने रिजेक्ट किए, इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: कभी ऐसा होता है कि वो रोल नहीं पसंद आता। अब मदर इंडिया में उन्होंने मुझे रोल कहा कि ये रोल करना है। He was very determined about it, and so were his our colleagues. But I knew it that it is not this a sensible thing for me to attempt, because Nargis and I were a combination at that time. I had done about 6 films with her, and some of them were good romantic films, and they were not out of the memory of people. Now, उसमें अगर मैं ऐसा पिक्चर हूँ कि मैं उसको माँ माँ करूँ या वो मुझे बेटा बेटा करके तो बात करे, आई थॉट दैट दिस विल नॉट गो वेल विद द पीपल। सो देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू एक्सरसाइज योर जजमेंट एंड इवैल्यूएट इट नो मैटर हु यू आर वर्किंग विद।
0: आप सोचिए 50 साल के करियर में इस बंदे की 50-60 फिल्में आई, इतनी पॉपुलैरिटी के बाद कितने ऑफर्स इनको आते होंगे, कितने रोल्स इन्होंने रिजेक्ट किए होंगे। पैसे वैसे का कोई लालच नहीं है। हैट्स ऑफ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा ओजी हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची।

अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: पर दिलीप कुमार साहब के बारे में कहा जाता था कभी कि वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, कभी कहा जाता था कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, और कभी कहा जाता था कि वो बहुत एरोगेंट हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यही सवाल जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: इंसान की पर्सनैलिटी होती है या उसकी शख्सियत होती है, उसमें मुख्तलिफ पहलू होते हैं। हंसी खेल का एक पहलू होता है, लुत्फ लेने का पहलू होता है, फिर संजीदगी का होता है, फिक्रमंदी भी होती है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, गुरूर या घमंड जो है वो इंसान की शख्सियत में एक बीमारी, एक मर्ज है, उससे बचने का। अब जो लोग मुझे ज़ाती तौर से जानते हैं वो तो जानते हैं, और जो लोग मुझे ज़ाती तौर से नहीं जानते वो नहीं जानते। और इस पोजीशन में ऐसे होता है कि आप ज़्यादातर जाके लोगों से मिलकर बात करें या अपनी किसी मसले की वजाहत करें, ये एक नामुमकिन सी बात है। तो आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी में ये तजाद जो है वो रहता है, लेकिन गुरूर और घमंड का अगर मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए तो मुझे उस बात का वाकई सदमा हुआ।
0: बिल्कुल सही बात है यार, इंसान अपने अपनों के आगे, अपने लव्ड वंस के आगे तो एक्सट्रोवर्ट ही होता है ना। हर किसी से थोड़ी ना अपना सब कुछ शेयर करते फिरेंगे। फिलहाल मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो है एक स्माइल, आप भी स्माइल कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगली बार से जब भी मैं दिलीप कुमार साहब का कोई इंटरव्यू सुनूंगी ना, तो साइड के टैब में उर्दू डिक्शनरी खोल के रखूंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। क्या क्या लफ्जों का इस्तेमाल करते थे वो। तो ऐसे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्योंकि वो एक पठान फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके फादर ये थिएटर एक्टिंग वगैरह के सख्त खिलाफ थे, और यूजुअली ऐसा समझा जाता है कि पठान जो है अंदर से चाहे भोले मासूम कुछ होते हैं और बाहर से एकदम रफ एंड टफ, तो ये एक्टिंग करने वाली एक जो सेंसिटिविटी होती है ये इनके अंदर कैसे आई, इस बारे में सुनिए दिलीप कुमार साहब ने यूसुफ खान साहब ने क्या कहा था।
1: पठान लोग आम तौर से फनून लतीफा से उनकी इतनी वाबस्तगी नहीं जितनी के जफाकशी या जवामर्दी से उनका नाम मुतालिक किया जाता है। लेकिन मैं खुद भी इस बात को समझ नहीं पाया, ये सोचता हूँ कि सूए इत्तेफाक में एक फिल्म एक्टर बन गया, और कुछ शायद मेरे बचपन के वाकयात और जो हादसात उनकी कुछ नौयत इस किस्म की थी कि अंदरूनी तौर से मुझ में एक जज्बाती कैफियत जो थी वो ज्यादा शदीद थी।
0: उफ उफ उफ उफ, फनूने लतीफा, बाबस्तगी, जफा कशी, कैफियत शदीद, मर गई मैं। वैसे छोटे होते से ये एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बड़े होके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए कि ये सिर्फ

0: दिलीप कुमार साहब जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई शायरी बोल रहे हैं, कविता बोल रहे हैं, कुछ पोयम बोल रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी जुबानें उनकी इतनी साफ, इतनी प्यारी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि उनको ये जो फेम, इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, इसके बारे में ये क्या सोचते हैं।
1: शोहरत और नाम जो है, इससे एक अच्छे आर्टिस्ट को या किसी भी आदमी को हमेशा गैर मुतालिक रहना चाहिए। शोहरत वो मेरी है, अगर मैं ये समझने लगूँ तो मेरी सेहत के खिलाफ बात होगी। अल्लाह की कुदरत है, मैं पैदा हुआ जिस घर में, वो उसमें मेरा इरादा नहीं था। मैं अपने इरादे से आया नहीं, मैं अपने इरादे से यहाँ नहीं पहुँचा, और जिस दिन इस दुनिया से जाना है उसका मेरा कोई, मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो शोहरत हो या बदनामी हो, रसवाई हो, वो दी हुई मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से है। कोशिश अपने तो यहाँ मेरा फ़र्ज़ है, मैं कोशिश करता रहूँ। मैं यही चाहूँगा कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूँ, बेहतर काम कर सकूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पे हम लेंगे ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा ओजी हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारो ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा ओजी हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारो ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची।

0: दिलीप कुमार साहब ने पता नहीं कितने एक्टर्स को इंस्पायर किया है, अपने कंटेम्प्रेरीज लाइक बलराज साहनी साहब को भी और आने वाली जेनरेशंस, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, कमल हासन, आमिर खान, शाहरुख खान, और इसीलिए दिलीप कुमार साहब को क्योंकि वो इतने फिनोमिनल एक्टर थे, उनको कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा, अभिनय सम्राट और खास करके ट्रेजेडी किंग बुलाया जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और क्यों उनको ट्रेजिक रोल्स में इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: ट्रेजेडी यानी अलमिया किस्म की कहानी का असर ज्यादा होता है, जैसे लैला मजनू की दास्तान या शीरिन फरहाद का वो किस्सा आप समझ लीजिए। ट्रेजिक कहानी होगी उसका असर और गम का, तकलीफ का या रंज का असर जो होता है वो देरपा होता है, खुशी और मसरत जो है वो जल्दी गुजर जाती है। मेरे ख्याल से जहाँ तक कि ये अलमिया अदाकारी का जो इम्प्रेशन ज़्यादा देर तक कायम रहा है वो इसीलिए है कि अलमिया कहानी जो है वो बजाते खुद देर पा असर रखती है।
0: चलिए इसी बात पे इनका एक सैड ट्रेजिक लेकिन आइकॉनिक गाना सुनेंगे जिसके पता नहीं कितने रीमेक्स बन चुके हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा ओजी हैंसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची।

0: दुनिया को जब पता भी नहीं था कि मेथड एक्टिंग नाम की कोई चीज होती है, तब से दिलीप कुमार साहब मेथड एक्टिंग कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब इस तरह की एक्टिंग जहाँ पे आप वो किरदार बन जाते हो, उसको घोट के पी जाते हो, फिर आप एक्टिंग कहाँ करते हो, सब नेचुरली एफर्टलेसली होता है। और क्योंकि दिलीप कुमार साहब अपने किरदारों में इतना घुस जाते थे, खास करके उनके जो ट्रेजेडी रोल्स होते थे वो उनकी मेंटल हेल्थ पे काफी असर डालते थे। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: खास तौर से उस वक्त जब कि हम अपने काम से जाती तौर से बड़े मुतासिर होते हैं, वो कहता है भाई ये आपकी माँ है और ये मर गई है, अब हमको मालूम है कि ये माँ नहीं है, ये मर गई, मरी भी नहीं है, ये जिंदा है, इनका नाम ललिता पवार है, ये जाग रही थी अभी, इन्होंने पेट भर के खाना। लेकिन अपने ऊपर वो एक हावी करना है एक जज्बे को, ये किस्म की शदीद यानी सजा है अपने नर्वस इक्विपमेंट को, यानी रोज रोज या हर साल अगर आदमी करता रहे तो वो इसका असीर हो जाता है। हर कहानी में समझिए ना कि रंज और तकलीफ, और रोज सुबह उठिए तो नहा धो के कपड़े बदल के आप स्टूडियो में पहुंचे तो कोई रोने मरने का सीन, इस किस्म की चीज जो है वो इंसान के ज़हनी नशोनुमा पर वो असरअंदाज होती है
0: जी। और फिर इसके बाद इन्होंने काफी एक्टिंग कोचेस से, साइकेट्रिस्ट से सलाह मशवरा किया और ट्रेजेडी रोल्स छोड़ के कॉमेडी, एक्शन या लाइट हार्टेड रोल्स करने शुरू किए। हम सुनेंगे दिलीप कुमार साहब का ये थोड़ा सैड बट क्लासिक गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

अपने नजर खाया, जिसके बाद ये थॉट आया तो सोचा आपसे डिस्कस कर ही लेती हूँ यार। सो दिस इज दिस रियलिटी शो जो OTT पे स्ट्रीम कर रही है एंड लाइक द नेम सजेस्ट्स लॉक अप। यहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स एक साथ लॉक्ड अप हैं, जिसमें से सूफी और लैला वो हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। जहां लैला बोल रहा था कि यार भाई तू कर सकता था ना अपने पेरेंट्स के सामने, तो पेरेंट्स तो बहुत क्लोज होते हैं, वो सबसे पहले समझते हैं सारी चीजें। जिस पे सूफी ने बोला कि यार देख, आपके पेरेंट्स आपके पैदा होने के पहले से ही आपको लेकर एक दुनिया क्रिएट करते हैं और उसको अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के साथ सजाते भी हैं। तो जब उनको आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चलता है, देन दे गेट अ सेटबैक कि भाई हमने जो सोचा था वो कुछ भी कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं होने वाला। इनफैक्ट पेरेंट्स तो बाद में आते हैं। सूफी ने बोला कि जब एक इंसान खुद अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में समझता है तो उसको भी 10-12 साल लग जाते हैं उस चीज को एक्सेप्ट करने में, एंड दैट हिट मी रियली हार्ड। क्योंकि एक्चुअल में यार हमारी सोसाइटी जिस तरीके से बिल्ड की गई है, द थॉट प्रोसेसेस, द नॉर्म्स, द टबूज, द जजमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड अराउंड दिस कम्युनिटी इज रियली रियली बैड। वो सिनेमा के थ्रू हो या फिर इन जनरल ऑन अ डे टू डे लाइफ, हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, थॉट प्रोसेस रखते हैं। सो इट्स हाई टाइम दैट मैं और आप इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज को समझे एज ह्यूमंस एंड ट्राई टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर द कम्युनिटी एज वेल। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।

0: follow me on my channel.
1: Mirchi, it's hot.

0: झूमे गाओ हरेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: धूम थिरके जा पाओ मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।